में विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र

0: परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली रु श्रोता बंधु मैंने वर्तमान कार्यक्रम शुणु आकाशवाणी पूरी केन्द्र फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्यम 103.4 मेगा हर्ज जोगे आम कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग मध्यम न्यूज ऑन एआईआर आप डाउनलोड करीपर आकाशवाणी पूरी आरंभ करुचु भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना कार्यक्रम प्रथम कंठशिल्पी सेलु महांती गीत रचना करिछंती महेश्वर पंडा।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होंठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया।

घटना संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

0: गर्ग अध्यक्षतारे गुजरात निवेशक सम्मेलन एवं रोड शो परवर्ती समीक्षा बैठक अनुषित हो जाइछि। बैठक रे निवेशक मानंक पई राज्य रे शिल्प ओ अन्य क्षेत्र रे प्रकल्प स्थापन लागि अनुकूल सुविधा सुजोग जुगाई देबा नै आलोचना होइथिला। सूचना अनुसार गुजरात सम्मेलन रे राज्य को मोट 48,333 कोटी टंकार पुंजी निवेश प्रस्ताव आसीछि। मुख्य शासन सचिव अनुगरंग अध्यक्षतारे संभाव्य बात्या प्रस्तुति संपर्कित एक बैठक भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में प्रस्तुति समन्वय और पूर्व सतर्क सूचना माध्यम रे शून्य मृताहत उपरे गुरुत्वारोप कर जाइथिला। आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक डॉक्टर मनोरमा महांती ओडिशा उपकूल में कौन बात्यार संभावना नथिबा बैठक में सूचना देथिले। संभाव्य बात्यार मुकाबला निमन्ते प्रस्तुति लागि रिलीफ और उद्धार कार्य पई 30 ओड्राफ टीम सजग रहा विभिन्न विभाग पक्षर जलभंडार परिचालना रास्ता और विद्युत सेवा विशुद्ध पानी जल जोगाण अत्यावश्यक सामग्री महजूद रखा संपर्क में समीक्षा होता। राज्यर स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुदृढ़ तथा समस्त स्तर में गुणात्मक चिकित्सा सुनिश्चित करने उपरे विभागीय कमिश्नर अश्वती एस गुरुत्वारोप करिछन्ति। एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य में स्वास्थ्य सेवा रोग नियंत्रण कार्यक्रम औषध उपलब्धता और हस्पिटाल भित्तिभूमि संपर्क में आलोचना होता। बैठक में आगामी मौसुमी ऋतु को दृष्टि रखि विभिन्न रोगर चिकित्सापी आगुआ पदक्षेप ने स्वास्थ्य विभाग कमिश्नर अधिकारी परामर्श देते। मालकानगिरी जिले में पुणि थे मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजन रोगी चिकित्सा आरंभ हो कटक एसीबी मेडिकल कॉलेज रु 7 जन विशेषज्ञ डाक्तर एक स्वतंत्र विमान जोगे मालकानगिरी पहुंची। पुरी श्रीमंदिर द्वितीय पर्याय रत्नभंडार अलंकार गणति मणति गतकाली शेष हो गणति शेष होगापर अलंकारगुड़ी को सुरक्षित भाव रखी आसंता 19 तारिखर पुणि थे गणति कार्य आरंभ हो श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी। जाजपुर जिला व्यासनगर सहर से राजीव गांधी स्टाडियम आधुनिकीकरण पर क्रीड़ामंत्री सूर्यवंशी सूरज भित्तिप्रस्तर स्थापन कर स्टाडियम 35 लाख टंका खर्च होगापड़ी। आकाशवाणी नवबर्ष पूर्ति उपलक्षे आकाशवाणी जयपुर पक्षर् एक संगीत समारोह आयोजित हो अवसर में प्रतिष्ठित शिल्पी जोगदे संगीत प्रदर्शन मध्यम दर्शकों मंत्रमुग्ध करते। सुवर्णपुर जिलापा सम्मेलन कक्ष में ओडिया भाषा सरकारी कार्य संपादन पर एक प्रशिक्षण शिविर अनुषित हो शिविर ओडिया भाषा कार्य करने लगी सचेतनता वृद्धि प्रशिक्षण दी। बरगढ़ जिले में आयोजित लोकरंजनी सांस्कृतिक कार्यक्रम आज उद्यापित होम को सांसद प्रदीप पुरोहित उद्घाटन करते। दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर में सृष्ट लघुचाप आहरी घनीभूत होवार संभावना रही। भुवनेश्वर आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार कालबैशाखी वर्षा जो राज्य में तापमात्रा ह्रास पाई तेज आसंता सप्ताह मध्य विभिन्न स्थान में सर्वाधिक तापमात्रा 2-4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पावर संभावना रही। गतकाली टिटलागड़े दिन सर्वाधिक तापमात्रा 40 डिग्री सेलसीयस रेकर्ड होता। राज्य विभिन्न स्थान में आसंता शनिवार पर्यंत कालबैशाखी जनित वर्षा लग रही पाणीपाग केन्द्र पक्षर अनुमान कर। आंचलिक संवाद बर्तमान पर यह परवर्त आंचलिक संवाद शुणिपर अपराह 2:32 मिनिटे।
1: आपक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचार कर स्वास्थ्य आज रही आलोचना अनिद्रा जनित स्वास्थ्य समस्या आलोचक डाक्तर शारदा प्रसन्न स्वाई।
2: प्रत्येक व्यक्ति बंचिवापाई खाद्य जेपरि भावरे आवश्यक सेहिपरि भावरे एक सुस्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यपाई निद्रा अपरिहार्य। जणे सुस्थ वयस्क व्यक्ति प्रत्येक दिन 6-7 घंटा निहाती शोइबा दरकार। जेउं व्यक्तिर निद्रागत समस्या जेते कम तार शारीरिक और मानसिक रोगरे आक्रांत होवार संभावना सेते कम। वर्तमान समय रे अनिद्रा जनित स्वास्थ्य समस्या एक साधारण घटना भाव उभा होइछि। मानसिक रोगी विभिन्न प्रकार शारीरिक रोगी तथा रक्तचाप डायबिटीस हृद्रोग और क्यासर आदि भोगुवा रोगी और निशाजनित मानसिक समस्या भोगुवा रोगी निद्राहीनता एक साधारण समस्या। वर्तमान समय रे कर्म क्षेत्र में बंचापी अहरह संग्राम छात्र छात्री मध्य युवावस्था प्रबल प्रतिजोगिता अफिश्रे कम कर व्यक्ति मैंने दीर्घ समय बसी रही कम करने और शारीरिक परिश्रम ठार दूरे रहा फल निद्राहीनता धीरे धीरे बढ़ी चली। वैज्ञानिक अनुशीलन जमापड़ी सारा विश्व रे शतकड़ा 15% लोक

0: आपने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र कार्यक्रम प्रसारित होनिश आठ दशमिक छः मीटर तथा नौश बास्तर किलोहर जोगे आम परवर्त कार्यक्रम ओडिया संवाद
1: आकाशवाणी संवाद पढ़ुंते चंदन घोष मुख्य संवाद नीट स्नातक 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट घटनार तदंत आरंभ कर मामला रुजु कला सीबीआई देशव्यापी अदालतगुड़िकर आधुनिकीकरण निमन्ते ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करिबा लागि एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करने को सुप्रीमकोर्ट घोषणा तमिलनाडुर नवनिर्वाचित टीवीके सरकार विधानसभा आज प्रमाण करेंगे निजर संख्यागरिष्ठता महाराष्ट्र में एक धार्मिक समारोह में कांथ भुशुड़ी पड़वर छः जन श्रद्धालु मृत्यु एवं आईपीएल गतकालीर मैच रे सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन रे परास्त कला गुजरात टाइटन्स नीट स्नातक 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट होगा घटनार तदंतभार हाथ को नहीं केन्द्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई एक मामला रुजु कर शिक्षा मंत्रालय अधीनस्थ उच्चशिक्षा विभाग पक्षर् ए संपर्कित दिजाइवा अभोग भित्तर यह मामला रुजु होती सीबीआई पक्षर् जारी कर एक बृत्ति में कहुई सीबीआई कही परीक्षार होता अनियमितता एवं प्रश्नपत्र प्रघट अभोग समेत यह घटन कौन अपराधिक षड़ ठके

0: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज और अब मुख्य समाचार तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की समय से पहले दस्तक देगा मानसून और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया अब समाचार विस्तार से तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार

0: सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्ण मूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान

0: मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब

0: 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समेट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Center increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M, and IUM.

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए सफर को जारी करते हुए आगे चलकर आपको सुनवाते हैं ये गीत परम सुंदरी फिल्म से। सचिन जिगर का गाया गीत है, आदित्य रिखारी ने साथ दिया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सचिन जिगर का ही संगीत है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना परम सुंदरी फिल्म से सचिन जिगर की आवाजों में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तनु वेट्स मनु रिटर्न्स फिल्म से स्वाति शर्मा ब्रिजेश सांडल्य की आवाजों में ये अगला गीत, जिसे लिखा है वायु ने और धुन बनाई है तनिष्क साथी वायु ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जावेद अली का गाया गीत सुनिए। इस गीत के गीतकार हैं रकीब आलम, देवीश्री प्रसाद का संगीत है, फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज।

0: पुष्पा द राइज फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में अगला गीत सुनिए फिल्म लव यापा से।

लव्यापा फिल्म से ये गीत आपने सुना, जुबिन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी का लिखा गीत था। इस गीत की धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। गब्बर इज बैक, इस फिल्म से सुनिए अगला गीत। देवनेगी परुमा दास गुप्ता की आवाज।

आंखों पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा चुरा के। कुमार का लिखा गीत था, चितरंजन भट्ट का संगीत। गब्बर इज बैक फिल्म से देव नेगी और परोमा दास गुप्ता की आवाजों में ये गीत आपने सुना।

सत्यमेव जयते टू फिल्म से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में। नासिर काजमी और मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, रोचक कोहली, नुसरत फतेह अली खान का संगीत, बत किया ये गीत।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में अभी अपने गीत सुना सत्यमेव जयते टू फिल्म से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ों में इरशाद कामिल का लिखा गीत प्रीतम के संगीत से सजा फिल्म कॉकटेल से।

फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ अब दीजिए आज्ञा, पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर। प्रकाश
0: नमस्कार
1: सर जी बोल रहे हैं।
0: जी, मैं बोल रहा हूँ प्रकाश, और आपका परिचय दीजिए।
1: सर मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से सेवाराम रतनानी बोल रहा हूँ सर।
0: जी, आपका कार्यक्रम पर स्वागत है। और कैसे हालात हैं अभी? तो चारों तरफ जैसे गर्मी हो रहा है,
1: बिल्कुल सर, बहुत गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है।
0: गर्मी के हालात जो बढ़ता जा रहा है हर साल।
1: ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है सर।
0: जी, सारे विश्ववासियों को क्या करना चाहिए जिससे कि ये गर्मी कम हो, हमारा जो जलवायु है वो ठीक रहे?
1: सर इसका एक ही उपाय है कि अपने पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाएं, और वनों की जो कटाई ज्यादा हो रही है वो कम से कम हो तो सर पर्यावरण सुधर सकता है और क्लाइमेट चेंज का असर भी कम हो जाएगा सर।
0: आपने सही बताया, और हम सब लोगों को सचेतन होना चाहिए और इसके बारे में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जैसे कि ये गर्मी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो पेड़ की छाया में जो लोग रास्ते पे जा रहे हैं वो थोड़ी देर वहाँ पे रुक सकते हैं, फिर चल सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, पेड़ पौधों से छांव छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, फल फ्रूट भी मिलते हैं।

0: जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं।
1: बड़ा दुख होता है जब कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ निर्माण के लिए बड़े बड़े पेड़ जो काट देते हैं, कहाँ पे रास्ता बनता है तो कहाँ पे बिल्डिंग बनता है, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ जो काट देते हैं उनको जो बढ़ने में वो तो 100 साल लग जाते हैं, लेकिन काटने में 1 ही मिनट नहीं लगेगा।
0: आप सही बोल रहे हैं सर, इसके लिए भी कानून बने हुए हैं, आपको पर्यावरण विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको उसके बाद उतने पेड़ पौधे लगाने भी पड़ेंगे सर, ऐसा नियम है।
1: जी, जो नियम है उसको हम सबको पालन करना चाहिए और हमें भी ज्यादातर सचेतन रहना चाहिए, कुछ हमारा योगदान भी होना चाहिए कि हम प्रकृति को सुंदर रखें, स्वस्थ रखें, जैसे कि जलवायु है वो ठीक रहे।
0: बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर।
1: आपका जो थर्मोकोल का बिजनेस है?
0: हाँ सर।
1: आपका बिजनेस कैसे चल रहा है?
0: बढ़िया सर, बढ़िया।
1: आप पहले भी हमको फोन किए हैं तो ऐसे ही आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बोलिए, आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए कौन सा गाना सुनाए?
0: सर आप अपनी पसंद का कोई भी मुकेश का गीत सुना दीजिएगा सर।
1: ठीक है, हम आपके लिए ये गाना सुना रहे हैं। आज के कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, नमस्कार जी।

0: हेलो
1: ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।
0: नमस्कार। हेलो आकाशवाणी पूरी कार्यक्रम आपन को परिचय दियंतु।
1: ମୁଁ ମନୋଜ କୁମାର ପଡ଼ଲ କହୁଛି, ଡୁମାଲ ଉଦିତନାରାୟଣପୁର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ।
0: अच्छा, कळाहांडीरु आपन फोन करिसेंती जे मनोज बाबू आमर कार्यक्रम रे आगुरु केबे अंश ग्रहण करथिले?
1: हां, थरे करथिले आपन को स्टेशन को, आउ एटा 2 नंबर थरो कथा होउछि।

0: भूषणम चंद्र नरिणम भूषणम पति पृथ्वी भूषणम राजा विद्या सर्वत्र भूषणम। नमस्कार आज्ञा।
1: नमस्कार समीर बाबू।
0: मु समीर पंडा कहुची तेलंगा पेंटा कटक।
1: आपणको कंठस्वर सुनिके आमे जानि गलुनी जे आपण समीर बाबू फोन करछंती। आपण पूर्वर मध्य आमर कार्यक्रमर अंशग्रहण करछंती आ कहिछंती जे गोटे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी रे अछंती। आपणकर काम एबे केम चालछि?
0: हां आमो काम एबे फुल पिकअप रहछि काहे कि ना ये जेहेतु सीजनरी बिजनेस।
1: हां
0: जते सुखिला रहिबो पागो आमो बिजनेस सेते बढ़िया चलिबो। वर्षा हे गेले सब काम मंदा हे जिवो खोलाखोली हे परिबोनी किबा कंस्ट्रक्शन रो कोनो जिनस आगे बनी।
1: जो खरा दिने विभिन्न ये जो निर्माण क्षेत्र रे जो निर्माण श्रमिक माने काम करछंती सेमानक पई किछि गोटिए निर्देशावली रहिछि सरकारक तरफरो जे सेमाने केते समय काम करिवे खरा बेले विश्राम नेबे आउ तापरे पुणी छाई लेउठिले काम करिवे से सब नीति नियम पालन होछि। तो
0: निश्चित भाबरे सेइ दृष्टि त मु एबे घरे अछि कारण एबे सकाळ 7 रु दिन 11 पुणी 3टा 3:30 परे संध्या 6:30 एभळी टाइम शेड्यूल करा हिजि जा फलरे प्रबल खरारे बा प्रखर खरारे के बाहर को बाहरिबेनि से समय तक विश्राम नेबे।
1: कोन कहिबे खरा दिने किछि जो जनसाधारण को विशेष करे रास्ता रे जिबा बेले उपशम मिलिया पई किछि कोनसी आपनकर सेठी स्वच्छासेवी संस्था होंतो बा प्रशासन तरफरो किछि पदक्षेप निया जाउछि?
0: हां स्थान स्थाने किछि स्वच्छासेवी बंधु माने जल छत्र व्यवस्था करछन्दि भारी खुशी लागे। बेले बेले कोन हुए जेतले शोष लागुथिबो आपनको कि जने डाकी कि पानी मुंदी पिए देले आत्मा को शांति लागे एवं तांको धन्यवाद ते दबा को इच्छा हुई।
1: बहुत सुंदर भाव रे आपन कथा टिक उपस्थापन कले तबे समीर बाबू आ कोहंतु आजिर कार्यक्रम रे आमे आपन को पई को गीत सुनिबो।
0: आज सुनि दियंतु ओडिया चलचित्र मा ओ ममतार गोटे सुंदर गीत अछि किए सत किए सतर हसी देले सब निजर।
1: ठीक अछि आमे सुनौछ आपन को पई गीत टिक
0: रहिले। आज्ञा नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: राजन मिश्रा और साजन मिश्रा की आवाज़ों में आप सुन रहे थे भक्ति माला से ये भक्ति गीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जान

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

द मॉर्निंग सन इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और इनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। चंदी रमन रमानी का संगीत था सोजे दिल, इस एल्बम से इस गज़ल को हमने आपको सुनवाया। ना बाबा ना, ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज़ रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जयवालिया की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही की ही आवाज है, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के बोल।

लकी अली की आवाज़ में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज़, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ़ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हज़ार हुए। इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ रज़ा को, और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आहा सुचित्रा, इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन और सलीम, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगथरिया और श्रेया घोषाल की आवाज़ें, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल कवित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार

0: बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्मदिन पर उनकी ही आवाज से सजे कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: राम लखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनोहर दास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को उनके जन्मदिन के मौके पर। सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनन उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मनहर उदास की आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मनहर उदास और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के बोल हैं।

विविद भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम, और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में हैं। और अब आपको सुनवाते हैं जांबाज फिल्म का ये गीत मनोहर दास और साधना सरगम की आवाज़ें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जांबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जानन जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाज़ें इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

मनहर दास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मन उदास कंचन और आनंद की आवाज में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना। कंचन मनरदास और आनंद की आवाज़ें, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनरदास के जन्मदिन पर उनकी आवाज़ से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं और अब सुनते हैं मनरदास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में सौदागर फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ ही आज के कार्यक्रम के शुरुआत में आपने तो ढेरों बातें हम तक पहुंचा ही दी हैं, लेकिन हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस एक पैराग्राफ में बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित गीत, जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आपके लिए इबारत तो पोस्ट कर दी ही जाती है और आपको ये पता लगाना होता है उसे पढ़कर कि कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा भी इसी बात में है कि गानों की जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट है, हमारी जो लिस्ट है, हमने जो सोच कर वो इबारत लिखी है, वो सोच आपकी सोच से मिल जाए और वो गाने मैच कर जाए। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गाने ना मैच करें, फिर भी आप फेसबुक कमेंट्स के जरिए पोस्ट पर ये बता सकते हैं कि क्या कि कौन से गाने आपको लगता है कि शामिल होंगे, हो सकता है वो गाने शामिल हो जाएं। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम तो नेहा शर्मा के साथ आप सुनने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में आज की इबारत या टेक्स्ट हमने जो लिखी है वो क्या है आपको बता देते हैं। जिंदगी की पहेली कोई समझ कहाँ पाया है, कभी तो जिंदगी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुश्किल, और कभी ऐसा ख्याल जो महका दे मन। जिंदगी एक ऐसी नदी जिसकी धारा बिना उलझनों के बहती है, कभी गाती झूमती और रचती है सौ अफसाने, और कभी इसकी हकीकत कोई जाने तो कैसे जाने। ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, थोड़ी अनजानी तो थोड़ी जानी पहचानी। इसलिए तो कहते हैं जीना तो उसी का जीना है जो दे बेसहारों का सहारा, जिसके होते न कोई जीता न कोई हारा। तो ये है आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपी हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गाने मतलब शामिल हो सकते हैं। और आपने बहुत सारे गीत हमें लिख भेजे हैं, अलग अलग शब्दों को आपने छांट लिया और कहा है कि इन शब्दों पर गीत तो होने ही चाहिए। देखिए ये आपके कमेंट्स देखकर हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट काफ़ी हद तक तो मिल रही है। अब ये देखना है कि किन के जो गीत हैं वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि ये गीत शामिल होने वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, सवाल है, जवाब है, वो जो भी है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो आप किस तरह से सुलझाते हैं वो पहेली? क्या आप भी परेशान हो जाते हैं या आप रखते हैं संयम और अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी को एक सही ढर्रे पर, सही रास्ते पर ले आते हैं? और क्या है अफसाना आपकी जिंदगी का, हमसे बांटिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और हमें ये भी बताइए कि इसमें आवाज किसकी है।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: मन्नाडे की आवाज़ में आनंद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे बहुत से साथियों ने इस गीत के बारे में सोचा था कि ये गीत तो ज़रूर शामिल होगा। तो बिल्कुल सही बात तो है, क्योंकि एक टेक्स्ट का जो पहला अक्षर इस तरह से आए तो लगता है कि ये तो होना ही। लेकिन एक पहेली जो हमारे साथियों के मन में बनी हुई है, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि पोस्ट कब आती है पता नहीं चलता, तो लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण में कुछ परेशानी हो रही है या समझौता हो रहा है। तो हम इन्हें कहना चाहते हैं कि क्योंकि शुरुआती दौर में एक घंटे का जो अंतराल रहा करता था कार्यक्रम की पोस्ट और कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे कई श्रोताओं ने कहा कि इतनी जल्दी टेक्स्ट में से शब्द खोजना या गीत सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस इस असुविधा की सुविधा के लिए, असुविधा को सुविधा बनाने के लिए ही कार्यक्रम का टेक्स्ट जो है वो रात में आ जाता है, ताकि आपको एक लंबा समय मिले ये सोचने के लिए कि कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं, और आप अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट भी हम तक पहुँचा सकते हैं पोस्ट पर कमेंट के जरिए। और जिस तरह से इन्होंने ये बात लिखी, हमारे दूसरे श्रोताओं ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कि रात में ही पोस्ट आ जाती है। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप रात्रि को ही कार्यक्रम की पोस्ट डाल देते हो, और उन्होंने जो साथ में इमोजीज डाली हैं उससे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात से खुशी है। वहीं हमारे एक और साथी ने भी कहा कि पिछले जो रात में पोस्ट आती है उससे उन्हें काफ़ी सुविधा हो जाती है, ताकि वो अपने जो भी बातें लिखनी है करनी है उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त समय मिल जाता है। तो बस इस तरह से अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातें के साथ साथ अलग अलग विचार भी होते हैं। हमारी कौर साथी कह रहे कि इतनी जल्दी इबारत को हम श्रोतागण को शेयर करना कुछ कुछ सरल सा दिखता है, धन्यवाद विविध भारती परिवार। तो एक ही चीज़ों के दो अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं हमें जीवन में भी। तो आप किस तरह का पहलू देखते हैं अपने जीवन में, और हमने पूछा था कि जीवन में अगर कोई मुश्किलें आ जाए तो आप उन्हें कैसे सुलझाते हैं, क्या आप उस मुश्किल को लेकर थोड़ी और मुश्किल में पड़ जाते हैं, या गाते झूमते नाचते अपने उस मुश्किल से पार हो जाते हैं अपने विचारों के जरिए, हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। उम्मीद है कि ये गीत भी शायद आपके लिस्ट में शामिल किसी एक गीत से मिलता हो।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आंचल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, और हमारे टेक्स्ट और इबारत को देखकर हमारे कुछ साथियों ने शब्द चुने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज इस कार्यक्रम में हो। हमारे एक साथी ने लिखा सवाल पाया, हालांकि उनके साथ गाने भी लिखे हैं लेकिन हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। सवाल पाया कहाँ, जवाब महका, गाता झूमती, सपना रचना, जाने कहानी, सहारा बेसहारा, जीता हारा, ये शब्द हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जिनके जिनसे संबंधित गीत हम सुनवाने वाले हैं, ऐसा इनका अनुमान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ शब्द हैं जिंदगी पहेली कोई समझ, सवाल जवाब ख्याल जीना सहारा, अनजानी बहती झूमती गाती जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं और इनसे बनने वाले गीत भी इस क्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई आज गाने नहीं लिख रही हैं क्योंकि बहुत सी कॉमन गाने बचते हैं जो लगभग सबने लिखे हुए होते हैं, मैं थोड़े अलग यानी रेयर गाने पोस्ट करती हूँ जिसका लिस्ट में होना असंभव ही है, तो इसलिए वो गाने पर कमेंट नहीं करी। भाई ये तो क्या बात हुई, हो सकता है कि आपके वो रेयर गीत ही हम चलाना चाह रहे हों, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता। भाई इस तरह से आप अगर कहें कि हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे तो ये तो ज़रा अच्छी बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है जिंदगी पहेली सवाल जवाब मुश्किल ख्याल महका मन नदी धारा उलझन गाती झूमती रचना या रचती अफसाने हकीकत सपना कहानी अनजानी जानी पहचानी सहारा बेसहारा जीत हार। तो एक तरह से

इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उछा लिए हैं, तो इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और ज़िंदगी से संबंधित अपने विचार भी हमारे साथी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज की इबारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, ज़िंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी ज़िंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी। और क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है, तो एक सवाल से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है।

0: साइलेंस साइलेंस।
1: वो तो है स्कूल का टीचर हर दम जो चिल्लाए, क्यों बच्चों ठीक है ना?
2: नो सर नो सर, रॉन्ग आंसर रॉन्ग आंसर।
0: क्या कहा?

0: ज्यादा तुम सब जानो इस दुनिया का हाल। अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी इस बात को लेकर काफ़ी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट। किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आप को लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हों और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने

कोई ऐसी कहानी हो जो आपने जिंदगी में कभी सोची ही ना हो। हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हो और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहती हैं कि भाई जिंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए। तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदनलाल सहगल की आवाज़ या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बंद कर आपसे पूछते हैं, नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत? ससुराल फिल्म का ये गीत है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे एक साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के ज़रिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे सारे स्वप्ने दीवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अथा चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का, कहना है और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। ये उन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही है, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती, अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफ़ी सारे शब्द चुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुनें तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहाँ उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही हैं अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई ख़तरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफ़र में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज़ किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है, और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में। तो हम उन्हें बता दें, जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में, और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज़्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोवर 100K लिखे हैं, यानी 100,000 फॉलोवर हैं, 100,000 हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती हैं वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती हैं। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक साइड में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर। नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियाँ चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला। एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज़ है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में, और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी दो दिन पहले भी आया था, नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मज़ा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किन की आवाज़ें हैं इस गीत में।

0: बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान।
1: ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके, ये है बॉम्बे मेरी।

0: मेरी जान।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने कि सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं हैं, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठें और बस बाहर आएं, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहाँ, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूँ लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है, वहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे एक और साथी कहती हैं कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ, और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम, बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी, तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट

से ही काफ़ी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। तो यकीन मानिए, हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफ़ी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहां हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज़्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, ख़ास तौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली या कुछ

0: लिख नहीं पाए या फिर सब चीज़ें ठीक नहीं हुई। भाई ये जो एक भय है मन में वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं पढ़ाई
1: समय कक्ष त्याग करते। गत विधानसभा निर्वाचन में पिजांक दल टीके 108 टी आसन पाई फल राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर संख्यागरिष्ठता प्रमाण करने। पुडुचेरी मुख्यमंत्री भाव निखिल भारत एनआर कांग्रेस नेता एन रंगास्वामी आज शपथ ग्रहण करते पंचम थर लगे मुख्यमंत्री भाव दायित्व नहीं। पुडुचेरी लोकनिवास में आयोजित स्वतंत्र समारोह में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन तांको पद और गोपनीयतार शपथपाठ कराइथिले। कार्यक्रम में निखिल भारत एनआर कांग्रेस मालडी कृष्ण राव और बीजेपी ए नवस्वामी शिवायम मंत्री भाव शपथ ग्रहण कर। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी साधारण संपादक बीएल संतोष, राज्य बीजेपी सभापति भीपी रामलिंगम एवं अन्यान्य दलीय नेता माने जोग देथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांका गस्त समय स्वतंत्र सुरक्षा गोष्ठी एसपीजी प्रोटोकल अधीन समस्त अत्यावश्यक सुरक्षा व्यवस्था व्यवहृत जानवाहन संख्या ह्रास कर। गुजरात एवं आसाम को प्रधानमंत्री निकट गस्त अवसर में सुरक्षा जानवाहन संख्या को ह्रास कर सूचना दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया सृष्टि होता विवादीय परिस्थिति जो पेट्रोलियम जात ईंधन उपर निर्भरशीलता ह्रास एवं परिवेश अनुकूल विकल्प आपणेवा उद्देश्य सातसूत्री व्यवस्था कार्यकारी करने लगी जनसाधारण को आह्वान देते। प्रधानमंत्री सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रम इलेक्ट्रिक परिचालित जानवाहन व्यवहार करने लगी प्रधानमंत्री अधिकारी निर्देश देते। केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मध्य सुरक्षा व्यवस्था जानवाहन संख्या 50% कम करने लगी निर्देश देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में तैल दर वृद्धि पाता परिप्रेक्षी में मितव्ययता अवलंबन करने को आह्वान परिप्रेक्षी में उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश एवं दिल्ली मुख्यमंत्री मंत्री विधायक एवं जनप्रतिनिधि सरकारी जानवाहन व्यवहार ह्रास करने लगे घोषणा कर साधारण परिवहन व्यवस्था व्यवहार करने लगे परामर्श दे। इंडोनेशिया वैदेशिक मंत्री सुगियोनो आज सकाळे नुआदिल्ली रे पहुंचछन्ते। आसंता कालीठारु आरंभ हेउतिबा दुईदिनिया ब्रिक्स वैदेशिक मंत्रीस्तरीय बैठक रे जोगदेबा लागि से भारत गस्तरे आछन्ते। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अध्यक्षता रे आसंता कालीठारु ब्रिक्स बैठक अनुष्ठित हेबो। बैठक में ब्रिक्स वैदेशिक मंत्रीगण एवं सदस्य तथा भागीदारी राष्ट्र प्रतिनिधि अंशग्रहण करेंगे। सेमाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात आलोचना करिवार कार्यसूची रही। बैठक में ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र वैदेशिक मंत्री मध्य द्विपाक्षिक स्वार्थ सम्बलित वैश्विक एवं आंचलिक प्रसंग आलोचना हेब। देशव्यापी अदालतगुड़िकर आधुनिकीकरण निमन्ते एक ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करने लगी सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करने लगी घोषणा कर। सर्वोच्च अदालतर विचारपति जस्टिस अरविंद कुमार विचार विभाग भित्तभूमि परामर्शदाता कमिटर अध्यक्ष रही। कमिटी अन्य कलिकता हाइकोर्टर विचारपति जस्टिस देवांशु बसाक, पंजाब हरियाणा हाइकोर्टर विचारपति जस्टिस अश्विन कुमार मिश्रा एवं बॉम्बे हाइकोर्टर विचारपति जस्टिस सोमाशेखर सुंदरेशन सदस्य अछन्ते। एतद्व्यतीत सुप्रीमकोर्टर सेक्रेटरी जनरल एवं केन्द्रीय पूर्त विभाग महानिर्देशक कमिटी सदस्य भाव कार्य करेंगे। एक कमिटी देशव्यापी विभिन्न अदालत में भित्तिमि सुदृढ़ करने दिगरे आवश्यक होता सरकारी आर्थिक सहायता आकलन करेंगे। चलित वर्ष अगस्त 31 तारीख सुद्धा ए संपर्कित रिपोर्ट प्रधानमंत्री अर्थनैतिक परामर्श परिषद सदस्य संजीव सान्यल को कमिटी प्रदान करे बोली सर्वोच्च अदालत कहिछन्ते। आपण माने संवाद सुनछन्ते आकाशवाणी रो। केन्द्र सरकार सुना एवं अन्यान्य मूल्यवान धातु पर आमदनी शुल्क वृद्धि करिछन्ते। एहा आजिठारु कार्यकारी होइछि। अर्थ मंत्रालय पक्षरु जारी विवृत्ति रे कुहाजाइछि सुना एवं रूपा उपरे 5% एवं प्लाटिनम उपरे 5.4% आमदनी शुल्क वृद्धि कराजाइछि। पूर्वरु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम एशिया रे सृष्टि होइतबा संकटजनक परिस्थिति जोगु वर्षक पई सुना न किणिबा पई नागरिकमानंकु निवेदन करथिले। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चिलीर वैदेशिक व्यापार मंत्री फ्रांसिस्को पीरेस मैकानों साक्षात आलोचना करिछन्ते।

नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि मौसम विभाग ने कहा इस साल मानसून जल्दी आने की संभावना

0: और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा

0: बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है भारत कल से शुरू होने वाली दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की एक रिपोर्ट
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है सीबीआई ने विदेश मंत्रालय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए

0: प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोता बंधु आपने कार्यक्रम शुणुंत आकाशवाणी कटक केन्द्र कार्यक्रम प्रचारित होनिश 8.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज़ चके

0: नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती जितेंद्र कुमार नायक मुख्य संवाद ईंधन व्यवहार कमाइबा लक्ष्य रे प्रधानमंत्री को सुरक्षा व्यवस्था रे व्यवहृत जानवाहन संख्या को ह्रास कले सरकार वैद्युतिक जानर अधिक व्यवहार पई राज्यवासी को परिवहन मंत्री को निवेदन प्रकाश पाइला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई द्वारा परिचालित द्वादश परीक्षाफल एवं कालबैशाखी प्रभाव में वज्रपात सह वर्षा नहीं 24 टी जिल्ला को पानीपाग केन्द्र सतर्क सूचना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गस्त समय स्वतंत्र सुरक्षा गोष्ठी एसपीजी प्रोटोकल अधीन समस्त अत्यावश्यक सुरक्षा व्यवस्था व्यवहृत जानवाहन संख्या ह्रास कर निकटरे गुजरात एवं आसाम गस्त अवसर रे प्रधानमंत्री का सुरक्षा जानवाहन संख्या को ह्रास करा जायतिला पश्चिम एशिया युद्धजनित परिस्थिति जोगु पेट्रोलियम जात ईंधन उपरे निर्भरशीलता ह्रास एवं परिवेश अनुकूल विकल्प अपनाइबा पई सातसूत्री व्यवस्था कार्यकारी करिबा लागि प्रधानमंत्री जनसाधारण को आह्वान देथिले प्रधानमंत्री का सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रम रे इलेक्ट्रिक चालित जानवाहन व्यवहार करिबा लागि श्री मोदी अधिकारी मानकु निर्देश दैछन्ति केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मध्य सुरक्षा व्यवस्था रे जानवाहन संख्या 50% को ह्रास करिछन्ती राज्यर जनसाधारण को अधिक वैद्युतिक जान ईवी रो व्यवहार पई परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना निवेदन करिछन्ती सांप्रतिक वैश्विक परिस्थिति एवं शक्ति संकट रो मुकाबला पई मंत्री श्री जेना निजे सरकारी बस रे यातायात करिवे बोली गणमाध्यम को कहिछन्ती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आह्वान क्रमे ईवी व्यवहार पई मंत्री श्री जेना राज्यवासी को परामर्श देछन्ती केन्द्र सरकार वैद्युतिक जान चलाचल को प्रोत्साहन देवा लगी मंत्री श्री जेना ईवि उपर दि जा सब्सिडी को 2028 पर्यंत वृद्धि करा जनसाधारण अधिकर अधिक वैद्युतिक जान किणवा सह परिवेश अनुकूल व्यवस्था को मजबूत करने मंत्री आह्वान देते
1: मोर समस्त अपील ओडिशा जनसाधारण को अपेक्षा रहा जो प्रधानमंत्री जो अपील अच्छे आम कार्यकारी करवा लोकों गमनागमन इवि गाड़ी जिते अधिक रु अधिक व्यवहार करें ताक सरकार आम गुरु जो सब्सिडी दूसरे सब्सिडी सरकारी घर पे अधिक रु अधिक इवि हवा आवश्यक अच्छे सरकार तो ईवी गाड़ी किणवाई जो सब्सिडी दौर प्रोत्साहन जनक भाव यह राशि दौर कथा तेल कम व्यवहार करें निजी निजे बुझे गोटे गाड़ी में जमी दुई जन जापर सहभागिता सहित आम ये काम को आगू न
0: मंत्री श्री जेना व्यक्तिगत जान व्यवहार करने परिवर्तन आम बस पर साधारण परिवहन सेवार अधिक उपयोग करने को नागरिक मान परामर्श देते एसत ईंधन व्यवहार जातायात चाप और परिवेश प्रदूषण कमेबापी गोटे कार्रे एकाधिक व्यक्ति गमनागमन करार व्यवस्था कार पुलिंग और सामान ढंग से स्कूटी पुलिंग भरीवहन सेवा अपणवा मंत्री श्री जेना गुरुत्व ईंधन संचय और स्थायी परिवहन को प्रोत्साहन देवा सरकार दायित्व होता जनसाधारण परिवेश सुरक्षा सह शक्ति संचय उद्यम को सुदृढ़ करने सामूहिक दायित्व निर्वाह करने मंत्री परामर्श देते नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र प्रकट घटनार तदंत पर केन्द्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई एक दल आज राजस्थान जयपुर में पहुंची राजस्थान पुलिस एसओजी द्वारा प्राय 24 जन को ए संक्रांत में पचराउचरा सीबीआई परीक्षा में होता अनियमितता और प्रश्नपत्र प्रकट अभियोग समेत यह घटना कौन से अपराधिक षड्यंत्र

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

फोन हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन। अरे 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे, होशियार खबरदार बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला।

लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वहीं है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन

मोहम्मद रफी की आवाज़ में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ।

0: Weekly. सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
1: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं सखी सहेली मंच पर और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी जाएगा।
0: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
1: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
0: बिल्कुल।
1: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था।
0: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही। अच्छा। है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
1: तो एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूं, है ना।
0: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय बता
1: दें। बता देते, देखो व्यंजन की बात आज करने वाले हैं तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला दूंगी।
0: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
0: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता
1: और
0: है।
1: इस शर्त पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
0: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
1: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
0: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
1: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है
0: ना? भाई मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना, क्यों मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम्स है, इतने सुंदर सुंदर
1: आप मेंटेन है ना
0: ये तो वही तो बात है,
1: इसलिए हमें संतुलन रखना है।
0: हाँ, पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
1: बिल्कुल आनंद,
0: संतुलन जरूरी है,
1: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते हैं फिर बातें करते हैं।
0: जी, तो सुनते हैं गीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आम तौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है।

0: असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियाँ आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ और जॉर्जेट साड़ियाँ। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियाँ, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
0: कितनी पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती हैं। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है, और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और टिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिज़ाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफ़ेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
0: अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई, डिज़ाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफ़ेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफ़ी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजनपूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
0: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है, या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
1: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है, और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की सकती, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
0: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौक़ों पर पहना जा सकता है।
1: और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिज़ाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं, और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है तो इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ियों को बनाने के लिए और एक दो महीने का समय लग जाता है

0: बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर-भर के कमेंट्स लिखे हैं,
0: भर-भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। हमारा यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन
1: धीरे बहुत स्वस्थ रहते थे, और काम कितना करते थे पुराने ज़माने के लोग।
0: बहुत लोग समझ घर में चक्की भी चलना है तो गेहूँ भी पछोरना है,
1: पानी भरना है, कुएं से पानी निकालना है, कितना सारे काम,
0: बहुत सारे काम थे। तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भाग दौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। हाँ, पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे भोजन में तो आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं, अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाए, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है, यानी ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी एक काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूं उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई तुम मंजरी थिरक रही थी इस गाने है ना,
1: जब हाँ। अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल बजने लगती है।
0: तो देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
1: बहुत सारे हमारे साथी,
0: अच्छा एक साथी और लिखते हैं, सुना ली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होत रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
1: और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या बात है,
0: बहुत सुंदर बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूँ फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी।
0: देखिए, खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी अब बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊँ कि ऐसा है? नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियाँ होती हैं, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
0: खाया जाता है,
1: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
1: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही, कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें लिखी है। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
0: पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
1: हाँ, वो इजिली सी आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
0: एक हमारे लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है, मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ, ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सोनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना, जब तक खाएंगे खाना तो

0: तो सोनाली, क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे. एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं. जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए. कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है.

0: तो सुनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन. जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए. परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है. ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है. इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए.
0: क्या बात है. और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा ना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार. और एक साथी लिखते हैं, प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं. इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था. क्या बात है, बिल्कुल सही बात है.
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना. अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर कल्पों को जन्म देता है.
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स. बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं. और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं. लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन. जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए उसी प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन चाहिए. परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है. ठीक वैसे ही जैसे लगता. तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया.
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी. चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा. तो देख दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली. खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है. जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वे ही खाने के लिए जीते हैं ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते. इसलिए विपरीत जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं. मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है. कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना.

0: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है ना,
1: इसमें मजा आता है जिसको लग रहा है मैंने दोबारा पढ़ लिया
0: पर अगर हमने गलती को है ना अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली तो वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। और सचमुच मंजरी आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
1: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी क्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
0: एक हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है, वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी, पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले गाना सुन ले, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए। मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ना, और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है। बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है। इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी या चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूँगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात,
0: और ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए।
1: खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: हाँ, और आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: बहुत सुंदर बताइए,
0: और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते,
1: बिल्कुल रह सकते।

0: सकते हैं, और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
1: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला
1: दाबेली, कच्ची दाबेली है डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई, एक मसालेदार मीठा नाश्ता है, और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अब गीत सुन ले, सुनते हैं।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी उसमें ये डालना है ये पाउडर डालना है ये सब डालना है और लेकर आते
1: हैं शॉपिंग कर लेते हैं फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज़
0: कभी कभी बनाते भी नहीं है वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था भेलपूरी खा रहा था तुझे अच्छी लगी तो मैं क्या करूं, और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता।

0: जो है वाकई में सही बात
1: है। सचमुच इंदौर बार बार जाने को जी करता है।
0: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है। तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए
1: और खूब खाइए, और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
0: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा।
1: और आप सभी को सोनाली पाठक
0: और वंशी वर्मा का
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी

0: नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुन कर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूँगा जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो। अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे।
0: जी।
1: उनकी आवाज़ सुना, अनाउंसर, न्यूज़ रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था।
0: जी।
1: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबार का फिल्म म्यूजिक का तो कहना ही क्या
0: जी।
1: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
0: जी।
1: और न सिर्फ आऊंगा
0: बल्कि हेड करेंगे
1: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
0: वाह वाह वाह,
1: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल

0: मैं क्या नाम लूँ, अब पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया
1: क्या
0: भर का।
1: बात है, क्या बात है। मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युवाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था, या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज़्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े
0: है?
1: दिग्गज
0: बड़े
1: लोग वहां
0: दिग्गज
1: से आते
0: लोग,
1: हैं।
0: नंदलाल शर्मा जी,
1: जी
0: फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहाँ पे काम
1: गंगा
0: कर।
1: प्रसाद जी,
0: हाँ, तो ये सब जो उसका मेयार था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी
0: और
1: जी
0: कर
1: जी
0: रहे थे, है ना? तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफ़र जो है आकाशवाणी का सफ़र, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफ़र शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि
1: जी
0: मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गज़ल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो
1: वाह,
0: सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट, और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला, हम तो
1: यहाँ
0: बड़े
1: एक पल के लिए रुकना
0: जी।
1: चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है, इसके
0: हाँ,
1: बारे में
0: बिल्कुल
1: थोड़ा
0: सही है,
1: बताएं।
0: वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं,
1: जी
0: तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरे पिताजी जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहाँ से निकल चुके थे
1: जी
0: नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का सेतु।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये
0: हाँ,
1: जरूर इस
0: क्लियर।
1: बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का, एक
0: बिल्कुल
1: बुनियाद का
0: बिल्कुल
1: शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: हाँ, ओम शिवपुरी उस वक्त NSD जा चुके थे। हाँ,
1: ओके
0: और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था।
1: जी
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का
1: वाह,
0: तुगलक,
1: क्या बात है
0: जो इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक
1: जी।
0: प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधा युग, ये
1: जी
0: सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे, तो

0: रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं तो कैसा लगता है आपको?
0: ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्ले लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे और अच्छा चल रहा है मुझे।
1: जी, और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा
0: बहुत
1: फिल्म का
0: अच्छा है,
1: गाना
0: बहुत अच्छा
1: है ना, ये गाना सुनते
0: पसंदीदा गाना है।
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ,
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी, शाही
1: रंजर, शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे, फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे,
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जेम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी,
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए, तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे ये सब भी होता था
0: जी, ये हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ है
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह वाह,
1: और कई फिल्में थी।

0: लंबी लंबी लाइनें
1: जी
0: और आपको टिकट मिल जाए, बड़ी बात है ना। तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब
1: बिल्कुल
0: दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध
1: जी
0: भारती चल रहा है, फिल्म भी गा रहे हैं, कभी कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफ़ी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक
1: जी
0: ही था,
1: जी
0: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता था।
1: अच्छा, क्योंकि गाना
0: ये गाना
1: चलता
0: चलता
1: था
0: नहीं था,
1: जी,
0: मैं गाता
1: खुद
0: रहता था। तो वो घर वाले भी बार बार बोलते, तो मुझे फिल्मी गानों का शौक,
1: जी
0: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुनें भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है। और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका
0: हाँ, मैंने
1: जारी
0: कहा ना,
1: रहा है
0: गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो
1: जी।
0: सिखाते भी हैं। तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है, लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया।
1: जी
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब BA का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने ही उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प।
1: जी
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे बाकी जो दोस्त हैं वो चला रहा है, हरी डायन उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था,
1: वाह वाह,
0: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज़्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज़्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह,
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज़्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको
1: हाँ
0: उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो वो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो,
1: हाँ हाँ हाँ
0: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज
1: बिल्कुल
0: इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो। तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं हम।
1: वाह वाह,
0: तो उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका किशाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी,
1: हाँ,
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा,
1: वाह
0: रविंद्र
1: वाह
0: मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब पसंद किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे। कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर
0: नहीं,
1: में?
0: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ, लेकिन
1: अच्छा,
0: उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके
1: जा
0: थे
1: चुके
0: तब।
1: थे उस दौर में
0: हाँ,
1: जब आप
0: तो वो
1: सक्रिय हुए।
0: तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है, वो
1: जी
0: उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। फिर
1: बिल्कुल
0: हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी, बिल्कुल
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही,
1: हाँ
0: तो लेकिन
1: हाँ
0: इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे, उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत
0: बिल्कुल,
1: बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और इसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या 1-1 घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपने नाम
1: जी
0: सुना होगा,
1: बिल्कुल,
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: जिनका हवा महल में काफी
1: आज भी
0: होता,
1: हवा महल में
0: हाँ
1: उनके नाटक
0: है ना,
1: ब्रॉडकास्ट होते हैं।
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था,
1: जी।
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको, और आज भी
1: अच्छा
0: शायद वही होगा।

0: जी
1: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
0: जी, तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
1: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था,
0: जी
1: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
0: बहुत ही मशहूर
1: हिंदुस्तान
0: अखबार,
1: का उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था,
0: जी
1: वो राजस्थान में पहली बार हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा। उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे, और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया, और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया, और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
0: अच्छा,
1: ये 1980 की बात है,
0: क्या बात है।
1: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई। मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ काम किया, फिर
0: तो वहां तब
1: जयपुर।
0: पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकिर,
0: जी,
1: इन लोगों के नाम से वो,
0: ऐतिहासिक
1: हाँ,
0: स्टेशन है जलंधर।
1: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
0: बिल्कुल,
1: पंजाबी राइटर्स, सोहन
0: यस
1: सिंह मीशा,
0: जी,
1: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी में अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पातर लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था, एक तरह से
0: बिल्कुल,
1: पंजाब का जयपुर था वो। वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट, और बहुत एक्टिव शहर था,
0: जी
1: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का
0: हाँ
1: प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं
0: दिक्कत
1: थी,
0: नहीं
1: मतलब
0: थी। जी,
1: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
0: कितने वक्त तक आप जलंधर
1: एक
0: में
1: साल,
0: रहे?
1: एक साल।
0: जी, और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
1: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा,
0: जी
1: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे,
0: जी
1: जो सुरजीत पातर, वो उस ज़माने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब कुछ
0: बिल्कुल।
1: मिश्रा साहब को भी मिला।
0: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
1: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था,
0: जी
1: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे, सब कुछ। और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ, तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था, या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार थे,
0: बिल्कुल
1: पूरे के
0: बिल्कुल,
1: नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
0: सुबह तक लोग सुनते थे और सबसे लास्ट में उन्हें
1: हाँ
0: पढ़वाया
1: तो
0: जाता
1: जी,
0: था।
1: और मेरा वो शुरुआती दौर था,
0: जी
1: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी,
0: अरे
1: तो ये
0: गजब,
1: एक आशीर्वाद था जो मुझे
0: क्या
1: मिला
0: बात
1: जो
0: है। क्या वो
1: जी।
0: गीत याद है आपको?
1: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ा इधर उधर,
0: जी
1: तरन्नुम में सुनाऊँ उसको जी।
0: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
1: जिंदगी की बस्ती में

0: मेरी नवगीत का शुरू हुआ था तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं
1: हाफती हवाओं
0: से,
1: से क्या बात है।
0: बात

0: दर्द के समंदर में कामना ने ठेला है,
1: कामना ने ठेला है, क्या बात है।

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: ओ बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम।
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सल्लम ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
0: जी
1: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
0: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं,
1: हाँ,
0: क्या चल
1: तो
0: रहा है मन में।
1: बस वो उनको सूचना जरूर हो, और हमारे संवाद माँ से होता था
0: जी
1: उनसे खूब, मतलब हंसी मजाक बोलना चलना साहब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ जो पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
0: जी
1: होते
0: जी
1: थे,
0: जी
1: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं, तो
0: वो
1: बता
0: दौर
1: देंगे।
0: भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटी है कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी तो उन्हें कितना खुशी दी, देकर
1: बिल्कुल,
0: दी।
1: ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया,
0: जी
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं, तो वो पिता के संस्कार है, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां,
0: बाप रे,
1: कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
0: आमने
1: सुना
0: सामने
1: है,
0: देखा। जी
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे,
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है, और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूँ तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो,
0: जी जी
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए।
1: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ है, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
0: तंग
1: आते
0: कर
1: जाते
0: लेना,
1: को तंग करना या मस्ती करना,
0: जी
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी,
1: शिकायत माँ के पास आती थी कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं
0: जी,
1: नंबर दो था,
0: जी
1: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घरेलू
0: बिल्कुल
1: नाम,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू।
0: जी,
1: खैर, तो वो छोटू की शिकायत जो है
0: रोज आ रही है।
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी जो
0: प्रोटेक्शन,
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो, तो वो मैं भूल नहीं सकता।
0: उसका जिक्र ना ही करें तो अच्छा।
1: तो ये एक अच्छा बचपन बीता, और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
0: अरे
1: मतलब घर
0: गजब।
1: में वो पारिवारिक के पिता नहीं थे वो,
0: हाँ, वो अपनी दुनिया उनकी,
1: वो अपनी दुनिया थी उनकी, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी, और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए, मतलब
0: हाँ।
1: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो, तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो, और पारिवारिक मजबूती जो है,

0: खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली है।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो हैं
1: बिल्कुल
0: उनकी कॉलोनी थी, तो हम उसी में तो, लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं,
0: हाँ,
1: एक था बचपन,
0: एकता बचपन
1: क्योंकि ये
0: जरूर,
1: जो
0: बिल्कुल
1: बचपन के
0: बिल्कुल
1: जो दिन हैं उनके
0: बिल्कुल
1: उनके नाम ये गाना है।
0: बिल्कुल जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखक की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहाँ पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा।
0: जी जी जी,
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तो एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो, क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ उठता बैठता था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही उनसे।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ही नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नामवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों का वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
0: जी जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीज़ें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता

0: कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे। बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना। तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में दो पंक्तियों में जो
1: सारी
0: वो
1: बात कह
0: हम सारी
1: देना।
0: बात कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, और तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। हम लोगों को हमारे जो साथ में थे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार

0: आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोता बंधु माने सुनथले हिंदी रे संवाद प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रु आकाशवाणी पुरी कार्यक्रम प्रसारण होउची 103.4 फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन माध्यमरे। श्रोताबंधु स्टूडियो घड़ी रे समय वर्तमान 6:05:20 आज सांध्य अधिवेशन को स्वागत जनाउची। आज उद्घोषिका मु दिव्यदर्शिनी परिडा। अधिवेशन को आग को बढ़ावा पूर्व वर्तमान कही रखुची आज सांध्य अधिवेशन प्रचारित होगा किसी कार्यक्रम रूपरेख संपर्कित सूचना।

प्रातः 6:05 शुणवे भक्ति नैवेद्यर कार्यक्रम आराधना गोस्वामी तुलसीदास रचित श्रीरामचरित मानसर 75 अध्याय शुणिपारे प्रातः 6:40 कार्यक्रम क्षेत्र महिमा शुणवे 7:25 काली एथेरे शुणवे पवित्र सवित्री अमावास्या संपर्क हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम प्रचार करिबु दिन 8:30 किछि सूचना और संगीतर मधुमूर्छनार कार्यक्रम श्रीक्षेत्र सुरभि शुणवे दिन 10 दिन 11 शुणवे आम केन्द्र द्वारा प्रस्तुत नारीभित्तिक कार्यक्रम मुक्ता श्रोताबंधु एठारे समाप्त होउछि आसंताकाली प्रातः अधिवेशनरे प्रचारित होबाक थबा कार्यक्रमर रूपरेख संपर्कित सूचना बर्तमान कहि रखुछि पाणिपाग सम्बन्धीय सूचना।

0: योजनार टेलिलर न्यायबंधु न्यायिक साक्षरता और सचेतनता कार्यक्रम सहित संप्रक्त हुंतु आपण टेलिलर टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in रे न्यायिक सहायता प्राप्त करिपारिबे।
1: श्रोताबंधु एबे वर्तमान आजर सांध्य अधिवेशनकु आरंभ करिबा एक भक्ति गीतटिकु सुणी। ভক্তি গীতটি রয়েছে শ্রীচরণ মাহতি কণ্ঠে অরুণ মন্ত্রী গীত রচনা এবং প্রেমানন্দ সঙ্গীত সংযোজনার।

0: खरा दिने अंशुघात प्रति सतर्क रुहन्तु।
1: अंशुघातर लक्षण गुड़िक हेउछि प्रबल झाळ बोहिबा, मुंड बुलाई अंधार दिसिबा ओ बांति लागिबा, प्रबल शोष लागिबा, मांसपेशी टाणी हेबा, अचेत हेबा किंबा बात मारिबा।
0: अंशुघात निमन्ते पूर्व सतर्कता गुड़िक हेउछि सकाळी किंबा उपर बेला खरा कम थिबा बेले बाहरकु जांतु। बाहरकु जिबा पूर्वरु जथेष्ट पाणी पियंतु। हालुका रंगर ढिला पोशाक, छत्ता ओ जोता व्यवहार करंतु। खरारे कठिन परिश्रम करंतु नाही, अधिक दूर चालंतु नाही। मझिरे मझिरे

आवश्यकता पड़ुछि एथि पई आमे सचेतन हेबास दैनंदिन जीवन रे याकु कार्यकारी करबाक पड़िबो मिलिमिसी ए दिगरे प्रयास करा नगले परिस्थितिर मुकाबला संभव हेबो नाही एणु प्रधानमंत्री का निवेदन कौनसी व्यतिक्रम किंबा अत्यधिक नुहे बरं भविष्यत रूपरेख पई एक मार्गदर्शन भाबरे आपणैबाक पड़िबो

0: गिरफ कला सीबीआई नुआदिल्ली आसंताली आरंभ हो दुईदिनिया ब्रिक्स वैदेशिक मंत्री बैठक और आईपीएल क्रिकेट वर्षा जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स मध्य मैच विलंबित संवाद शेष होगा
1: आकाशवाणी कटक शुणु जिला हलचल नयगढ़ जिला संपर्क
2: सुदूरु सदर अपहंच अंचलर स्वर उत्सव महोत्सव सभा समिति समारोह प्रगति दुर्गति एवं संगतिर अभिव्यक्ति को नहीं आंचलिक संवाद विभाग पक्षर प्रस्तुत करुछु जिला हलचल आज जिला हलचल शुणु नयगढ़ जिला संपर्क तथ्य दैछंती आम नयगढ़ संवाददाता विश्वनाथ प्रताप पटनायक और उपस्थापन मु महेश्वर साहू अक्षय तृतीय अवसर में नयगढ़ डाली गवेषणा केन्द्र में जिला स्तरीय अक्षय तृतीय कार्यक्रम पालित होता मुख्य अतिथि भाव मत्स्य और पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक जगदे माटी माँ का पूजार्चना पर अखिमुठी अनुकूल करते जिला मुख्य कृषि अधिकारी शिवनारायण सिंह परिचालन आयोजित सभार मंत्री गोकुलानंद मल्लिक चाषी मान सरकार विभिन्न कृषक कल्याण योजना विषय अवगत कराइले से कृषि और आनुषंगिक कार्यक्रम को अधिक लोकाभिमुखी करने विभाग अधिकारी परामर्श देते ए संपर्क रे मंत्री गोकुलानंद मल्लिक कहिथिले
3: आज दिन रे प्रभु जगन्नाथंकर रथ चकठु आरंभ करी विभिन्न शुभ काम आरंभ करा जाय विशेष करी चासी समाज पई चासी कुल पई आज दिन टी होची पवित्र दिन एई दिन रे समस्त चासी तांकर अखी मुठी अनुकूल करंती जोटा की पुराण रे वर्णित आमर हिंदू धर्म रे कथा कथित अछि आजर दिन में जहाँ कराए ता शुभ हुए एवं अक्षय रहे प्रभु निकट में जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करी जे ओडिशार समस्त अगणित चाषी मानू आशीर्वाद करतु तांकर आय द्विगुणित हो कृषक भाई माने जो माने कि आमर देश तथा राज्यर मेरुदंड अर्थनैतिक मेरुदंड कृषक हसिले राज्य हसिबो देश हसिबो कृषक टी हसिले गाँव विकास हो गाँव विकास हेले राज्यर विकास हो राज्यर विकास हेले देशर विकास
2: ओडिशा सरकार नूतन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत नयगढ़ जिले में प्रथम थर पर समूह विवाह कार्यक्रम सफलतार सह अनुष्ठित होता जिला प्रशासन पक्षर नयगढ़ पठाणी सामंत संस्कृति भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 22 जोड़ी बरकन्या सामूहिक भाव विवाह बंधन में आबद्ध होते वैदिक रीतिनीति अनुसार उत्साहमय परिवेश रे विवाह संपन्न होता जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष तथा खंडपड़ा विधायक दुष्मंत कुमार स्वाई मुख्य अतिथि भाव जोगदेव जिलापा मधुमिता रथ जिला परिषद अध्यक्ष देवाशीष पटनायक अतिरिक्त जिलापा रोजिना दास और उपजिलापा कर्णदेव समादार प्रमुख उपस्थित थे अतिथि मैंने नवदंपति को आशीर्वाद प्रदान कर योजना अनुजाई प्रत्येक दंपति को 45,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान कर संपर्क में जिलापा मधुमिता रथ कहते
4: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्भुक्त 22 जन कपल को आमर जिला प्रशासन तरफ रु बाहागर करा जाइछि समस्त को गिफ्ट दिया जाइछि एवं सरकार 45,000 टंकार चेक भी दिया जाइछि एही प्रोसेस आमे गत डेढ़ मास धरी आमर चालीछि जो माने अप्लाई करथिले ऑनलाइन से भीतर आमर सब सिलेक्शन हेतिला एवं समस्त रजिस्ट्रेशन पाई कि चली जो प्रोसेस के आ 2-3 दिन पर भी समस्त सर्टिफिकेट भी पाइबे जमीती रीतनीति सहित बाहागर करवा कथा सेमती करा जाइछि आमर ए जो पठाणी सामंत ऑडिटोरियम रो कैंपस रे 22 बेदी हेतिला 22 जन पुरोहित आसीथिले बेदी रो समस्त सरंजाम आइतिला
2: जिला आयन सेवा प्राधिकरण पक्षरु द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत जिला दौरा जज तथा प्राधिकरण रो अध्यक्ष अजंता षडंगी का पौरोहित रे अनुष्ठित होइतिला एथिरे विभिन्न प्रकार 1618 टी मामलार फैसला करा जाई 1,23,85,799 टंका जरिमाना आदाय करा जाईथिला महाप्रभु श्रीजगन्नाथ का आद्य क्षेत्र कंटिलो श्री नीलमाधव पीठ से अक्षय तृतीय आरंभ होइथिबा 21 दिनिया बाहर चंदन यात्रा भौरी उत्सव सह उद्यापित होइछि रीतिनीति अनुजाई श्री विग्रह कंटिलोर विभिन्न साही परिक्रमा करथिले चंदन पोखरी रे नंदा और भद्रा विग्रह को प्रतिदिन जलक्रीड़ा कराइले उत्कल भौरी अवसर में समग्र क्षेत्र भक्तमय परिवेश रे मुखरित हो उठिला विश्वविख्यात ज्योतिर्विज्ञानी पठाणी सामंत जन्मस्थान नयगढ़ जिला खंडपड़ा प्राय 22 कोटी टंका व्यय पठाणी सामंत प्लानेटोरियम निर्माण हेबो खंडपड़ावासी दीर्घ दिन दाबी पूरण होगाकूर अंचल आनंदर लहरी खेली जाइछि अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव चित्रा अरुमगम जिलापा मधुमिता रथ और वरिष्ठ अधिकारी माने खंडपड़ा गस्त कर प्रस्तावित स्थान परिदर्शन करते खंडपड़ा विधायक दुष्मंत स्वाई उपस्थित प्रकल्प कार्य शीघ्र आरंभ और निर्धारित समय सीमार शेष करने को परामर्श दिया जाता

श्रोता बंधु हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम बर्तमान शुणी ना गीतटी को आपका सुरूर हिंदी कथाचित्र हिमेश रेशमिया कंठरे निजस्व संगीत संयोजन गीत रचना रही समीर करा।

श्रोता बंधु आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी पूरी केन्द्र प्रसारण हो3.4 FM मध्यम बर्तमान शुणुंट हिंदी कथचित्र गीतर कार्यक्रम कार्यक्रम परवर्ती गीतटी रही हिंदी कथचित्र अग्निपथ उदित नारायण एवं सुनिधि चौहान सम्मिलित कंठरे अमिता भट्टाचार्य अन्यतम गीत रचनारू

0: आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर राज्य प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है।

0: प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा

0: बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र बहुविवाह उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा रोजगार शिक्षा खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु मालविका बंसोड़ देविका सिहाग लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ नमस्कार
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case.

0: हेलो।
1: नमस्कार सर। प्रकाश
0: नमस्कार
1: सर जी बोल रहे हैं।
0: जी, मैं बोल रहा हूँ प्रकाश, और आपका परिचय दीजिए।
1: सर मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से सेवाराम रतनानी बोल रहा हूँ सर।
0: जी, आपका कार्यक्रम पर स्वागत है। और कैसे हालात हैं अभी? तो चारों तरफ जैसे गर्मी हो रहा है,
1: बिल्कुल सर, बहुत गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है।
0: गर्मी के हालात जो बढ़ता जा रहा है हर साल।
1: ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है सर।
0: जी, सारे विश्ववासियों को क्या करना चाहिए जिससे कि ये गर्मी कम हो, हमारा जो जलवायु है वो ठीक रहे?
1: सर इसका एक ही उपाय है कि अपने पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाएं और वनों की जो कटाई ज्यादा हो रही है वो कम से कम हो, तो सर पर्यावरण सुधर सकता है और क्लाइमेट चेंज का असर भी कम हो जाएगा सर।
0: आपने सही बताया, और हम सब लोगों को सचेतन होना चाहिए और इसके बारे में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जैसे कि ये गर्मी कम हो और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। तो पेड़ की छाया में जो लोग रास्ते पे जा रहे हैं वो थोड़ी देर वहां पे रुक सकते हैं, फिर चल सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, पेड़ पौधों से छांव छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, फल फ्रूट भी मिलते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं।
0: बड़ा दुख होता है जब कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ निर्माण के लिए बड़े बड़े पेड़ जो काट देते हैं, कहाँ पे रास्ता बनता है तो कहाँ पे बिल्डिंग बनता है, तो वहां पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ जो काट देते हैं उनको जो बढ़ने में वो तो 100 साल लग जाते हैं, लेकिन काटने में 1 ही मिनट नहीं लगेगा।
1: आप सही बोल रहे हैं सर, इसके लिए भी कानून बने हुए हैं। आपको पर्यावरण विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको उसके बाद उतने पेड़ पौधे लगाने भी पड़ेंगे सर, ऐसा नियम है।
0: जी, जो नियम है उसको हम सबको पालन करना चाहिए और हमें भी ज्यादातर सचेतन रहना चाहिए। कुछ हमारा योगदान भी होना चाहिए कि हम प्रकृति को सुंदर रखें, स्वस्थ रखें, जैसे कि जलवायु है वो ठीक रहे।
1: बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर।
0: आपका जो थर्मोकोल का बिजनेस है,
1: हाँ सर,
0: आपका बिजनेस कैसे चल रहा है?
1: बढ़िया सर, बढ़िया।
0: आप पहले भी हमको फोन किए हैं, तो ऐसे ही आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बोलिए, आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए कौन सा गाना सुनाएं?
1: सर आप अपनी पसंद का कोई भी मुकेश का गीत सुना दीजिएगा सर।
0: ठीक है, हम आपके लिए ये गाना सुना रहे हैं। आज के कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, नमस्कार
2: जी।

श्रोता बंधु श्री जगन्नाथ भजन कार्यक्रम शेष भजनटी रही सालबेगंक गीत रचनार अक्षय कुमार महांती कंठरे।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है श्री वैष्णव ने बताया कि यह योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन

0: परियोजना को मंजूरी दे दी है रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है 3 व्यक्ति जयपुर से 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों तिलहन अनाज पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2020.